अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दशमेश पिता दे चरणां च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नूं रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नूं आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवाल

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। ते जेड़ा सतगुरु गरीब नूं सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहिंदे हन ओह गुरसिख तनखाइया है, ओह गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

चोरी ठगी यारी दा पैसा एकत्र कर देन। साहब सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सच्ची दरगाह।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जड़ा है वह सपुत्र है, बची जड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको

जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बन्नी रहनी रोजाना उस नु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इना दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे, जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान, बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वादू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे। ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

चैन कब हूं नहाए। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहाए।

छत्री को पूत हां, चढ़ती कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह। छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, तैसा पे आवत हो जो करो और जंजार जितो ग्रह को तुह त्याग कहा जितता मैं धरो। और जंजार जितो ग्रह को तुह त्याग कहा चितता मैं धरो, अब रीझ के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आपकी आग निदान बढ़े।

शिवा पर मोह है सब सन मनते कब हूं न करो शिवा पर मोह है सब सन मनते कब हूं न करो न डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल चाहो।

आन को दान न लागत नी को, आन को दान न लागत नी को, आज भले इनी हो दियो, आज भले इनी हो दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

0: सुधार करे आज आग टे इन्हीं के इन्हीं की कृपा फुन काम भरे
1: इन्हीं की कृपा फुन काम भरे
0: इन्हीं का प्रसाद सब जाए इन्हीं का प्रसाद सब जाए इन्हीं की कृपा सब शत्रु में

सबसे जो जाने नीचा सौ बनिए सबसे ऊंचा। अपने आप नू जेड़ा नीवा बना के गरीब बना के रखे वाहगुरु वालों उन्हों दात किन्नी मिलती है एदा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे अपनी बाणी अंदर कहिंदे दाणा होए अनार दा। अनार दा दाणा अपने आप नू निम्रता विच उसने अपने वजूद नू निम्रता च लिया के मिट्टी च रोलिया इन्ना गरीब बन गया मिट्टी च रुल गया वाहगुरु ने उस नू दात बख्शी भाग लाए भाई गुरदास साहब की बाणी दाणा होए अनार दा होए धूड़ धूड़ी विच टसे फिर होए बिरख हरियावला हरियावला बिरख बन गया लाल गुलाला फुल विगसे एक बिरख सहस फल फुल फल दे मन अंदर वसे एक दू दाने लख होए एक दू दाने लख होए फुल फल एक दू एक सरसे ज्यों ज्यों लइण तोड़ फल त्यों त्यों फिर फलिए हसे निव चलन गुरु मार्ग दसे निव चलन गुरु मार्ग दसे होए वड़ेवा जग विच वड़ेवे दा बीज उसका प्रमाण देंदे हुए भाई गुरदास कहंदे होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया वड़ेवे दे बीज ने अपना तन मिट्टी च रोलिया की होया होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया बूटी हो कपाह दी बूटी बन गया टिंडे हस हस आप खिलाया इथे ही बस नहीं अगे इम्तिहान होर पै गया दो मिल वेलन वेलिया वेलने विच नहीं वेलिया गया वड़ेवा दो मिल वेलन वेलिया लू लू कर तंब तंबाया तिंजन पिंज उड़ाया कर कर गोरी सूत कटाया तन तन खुंब चढ़ा के दे दे दुख तुआए रंगाया फिर कैंची कत्तन कटिया फिर सूई धागे जोड़ सवाया लज्जन कज्जन होए तजाया ए रुमाल बन के गुरु ग्रंथ साहब जी दे सभायमान हो देखो किड्डा वड्डा भाग गुरसिख दे सीस ते दस्तार बन के सज गया क्यों इस तरह बाबा दीप सिंह ने अपने आप नू सात संगत जी इन्ने निम्रता विच लै गए कहिंदे

0: जे जे तुमरे ध्यान को।
1: गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे। साहब फरमाते
0: जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप मुक्त मुक्त करे संसार।
0: नानक दिस जन को सदा नमस्कार। नानक दिस जन को सदा नमस्कार।
1: नित जपिए सांस।

नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। इतने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

गुरु तो जानता है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

आख्या जे तू अकल लतीफ ता काले लिखना लेख कोई पाप ना कर कोई ऐसा उपद्रव ना कर तू मनुख तू देवता बनन लई इथे आए ऐसा ना होवे मनुख तू पशु बन के जावे जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वास बख्शे चंगे गुण धारण कर जे औगुण वेखने हन ता अपने अंदर जाती पा ते जे सिफत करनी है उस्तत करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु दी कर आप नड़े गिरीवान में आख्या अपनी बुकल विच नीवा सिर पा के वेख विचार कर जो जिस माया दे लोभ ने तैनू पाप कर्म करन लई प्रेरणा दिती है ओ माया तेरी कितना कुछ सहायता करेगी ए रिश्ता आदि पाप कर्म जो फल तू प्राप्त कर रहे हैं ए माया तेनू सुख नहीं देवेगी ए माया नरक बन जाएगी आप नड़े गिरीवान में जो कुछ तू कर रहे हैं जो कुछ हृदय रूप पट्टी ते लिख रहे हैं उनु वाच उनु वेख तू की कर रहे हैं इसलिए बाबा फरीद जी कह

वृद्ध अवस्था एक मनुख की बिरध अवस्था है। ते बाबा फरीद जी दे पास आके बेनती कीती, फकीर साईं मैनू मुक्ति दा उपदेश दियो कि मेरा संसार ते आउणा सफल हो जावे। ये गल सुन के उसनू समझाउण लई बाबा फरीद जी ने सलोक उचारण कीता, फरीदा जां तू खट

मरण वर ले जासी परनाए। ओ भाई एक दिन ए पांच भूतक शरीर तैनू त्यागना ही पवेगा, ओथे तेरियां सियाणपां कम नहीं आउणी। एक गुरु का सिख जो सतगुर दे पाने विच अपना जीवन बतीत करदा सी, अज एक प्रेमी आया विचार वटांदरा होया ते गुरु के सिख ने आख्या, भाई गुरु नानक दी बाणी कहदी है कि जो होनी है ओ प्रबल है, जो अकाल पुरख ने लिख दिता है ओ होके ही रहिंदा है। मनुख दी सियाणप चतराई सियाणपा किते काम ना आई है, तुठा साहेब जो देवे सोई सुख पाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने लिखिया ओ हो के ही रहिंदा है। ता ए गुरु का लाल कहने लगा, महाराज जे पहला पता लग जावे ना ते मनुख अपना बचाव कर सकता है, कोई बड़ी गल नहीं। मैं ये गल नहीं मनदा, मनुख नूं पता होवे मुसीबत आ रही है, कोई ना कोई अपने बचन दा उपराला कर लेंदा है। जदों इसने ना मनी तां गुरु का सिख कहन लगा, भाई आओ सामने ताली देख रहे हैं, अज तो सत दिन बाद तैनू उत्थे फांसी चाड़िया जाना, जा तू अपना बचा कर ले जे कर सकदा है तां। महाराज मैं पूरा जतन करांगा, मैं वेखना किवें कोई मैनू इत्थे सूली चढ़ दे। घोड़ा उसते कोल सी ज्यों दौड़न लगा, रात दिन एक करके अपने वल्लों दूर तो दूर चला गया, पर कुदरत ने मौत ने उसनू घेर के उत्थे ही ले आउंदा जिथों तुरिया सी। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। सवेर का समा है, ए नगरी आ गई ते इसके कन्ना विच किसे दे रोण दी आवाज पई। जदों उत्थे पहुंचिया तां की तकिया, 16 सिंगार कीते हन, ज्ञानियां दे नाल भरपूर एक औरत जो रो रही है। आख्या क्यों रो रही है? कि मैनू राजे ने कढ दिता ते हुण मैं तेरे नाल परनीना है, तेरे नाल व्याह कराउणा। मन विच सोचिया भाई सिख ने तां कहा सी अज दे दिन तेरी मौत आवेगी, पर ए तां कीमती पदार्थ हीरे मोती जवाहरात नाल भरपूर होई होई लड़की और अपने मुंहों कह रही है मैं तेरे नाल शादी करनी है। आख्या पहला आ मुंदरा ले जा, शहर विच्चों कोई वस्तु ले आ, बड़ी भूख लगी है। जां ए प्रेमी शहर विच आया कुछ खान पीन दा सौदा खरीदन लगा, तां ए मुंदरा एक राजे दा चोरी होया होया सी, तां इस हलवाई ने इसनू बठा लिया ते जाके दरोगे नू जा दसिया, भई एक मनुख दे पास राज दरबार दा मुंदरा है ते तुसी हुण उसनू आके फड़ सकदे हो। जा उना ने आके मौके ते फड़ लिया, राजे दे पेश कीता। राजे ने एक नहीं दो नहीं कुछ नहीं सोचिया, आख्या जाओ इसनू सूली ते लटका देओ। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जां सूली चारण लई लियांदा गया तां जदों देखिया ते ओही ताली है जो गुरसिख ने कहा सी, भाई जो होनी है ओ कदे नहीं टल सकदी।
ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਏ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਟਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਵਹੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੌਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਣੀਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਜਿੰਦ ਵਹੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ।

जिस पुरुष ने जवानी विच कुछ नहीं किया, क्योंकि फरीद जी कहते हैं भाई बचपन खेडा विच बीत गया तो जवानी सिमरन विच बतीत कर लेंदा, क्योंकि जवानी विच देह अरोगता हुंदी है ते फिर बिरध अवस्था विच जदों मनुख पैर रखदा है तां फिर इस देही नूं रोग लग जांदे हन ते रोग काल दी निशानी है। इसलिए फरीद जी कहंदे न काली जिनी ना रावया, जिन्हां ने जवानी विच नहीं जपया उन्हां नूं भाई बिरध अवस्था विच भी चेता नहीं आउंदा, भाव ओह नहीं जप सकदे।

जिस गुरु घर का नाम आज बंगला साहब है, ये राजा जय सिंह बंगला होंदा सी। राजा जय सिंह औरंगजेब दे पास अहलकार सी, पर गुरु घर का भी अति प्यार वाला, बड़ा प्यार वाला गुरु का सिख सी। ते अपने घर आके राणिया नू सतगुरां दी बेअंत उस्तत बेअंत कौतक सुनाया करदा सी, भई वेखो छोटी अवस्था विच किडे किडे वड्डे कम कर रहे हन, किवें संसार दी रक्षा कर रहे हन, किवें जलदे बलदे होए संसार नू दुखां विचों कढ रहे हन। तां राणी दे मन विच आया, भला वेखां सही किन्नी तारीफ करदे हन, कोई मेरे भी दिल दी गल बुझदे हन के नहीं। तां अपने पति नू बेनती कीती, भई सतगुरां नू जाके अरदास करो, बेनती करो इस ग्रह विच भी चरण पौन आके। राजा जय सिंह ने जाके निम्रता सहित बेनती कीती, महाराज कृपा करो, मेरी राणी भी आप जी दे सोने दीदार करना चाहती है। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह मुस्कुरा पे, कहन लगे भाई वो दर्शन भी करना चाहती है ते साड़ी प्रीख्या भी लैनी चाहती है, जरूर चलांगे भाई। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह जी ने जिस दिन आना सी ना महलां विच, ते राणी ने जितनिया भी नौकरानियां कम कर दियां सन महल विच, सारियां नू राणियां वाले कपड़े पवा दिते ते आप नौकरानियां वाले कपड़े पा के बह गई, भई जे सच्चा गुरु होवेगा तो मैनू लभ लवेगा ते नाले मैनू मां आख के मेरी गोदी नू भी भाग लावेगा, मेरी गोदी विच बैठेगा। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह छड़ी हाथ विच पकड़ी हुई है, जदों राजा जय सिंह दे महल विच आए ते सारियां बीबियां जिन्हां ने नौकरानियां ने राणियां वाले कपड़े पाए हुए सी, छड़ी मारी आउंदियां नू ते कहंदे ने ए नहीं राणी, ए नहीं राणी, ए भी है कोई होर सवानी। सारियां तो लंघ के जिथे पटराणी बैठी सी ना गोलियां वाले कपड़े पाके,

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना, मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार भी सी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी हो।

अपने सुख से ही जग पाते हो। हा हा बाद विच जिहड़ा कल पहला पढ़िया जा रहा है, आओ एक शब्द सारे रल के

0: झूठी हो सकती है?
1: अरे तोड़ा झूठी हो सकती, तोड़ा सुच्चा है, हाँ सुच्चा है, ना बंदिया।

तब लग मुक्त ना कोई, उदों तक कोई भी इंसान मुक्त नहीं है, वो तमाम किस्म के बंधना दे विच है। गुरु बाबा जी कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन भरम, जदों तक मन का भरम नहीं टूट जाता, जो है वो नजर नहीं आ जाता। असलियत रियलिटी ट्रूथ जो वो नहीं जान जाता, महाराज तो यह भी आखते हैं कि उसे मूर्ख भी आख्या जा सकता। मूर्ख सच ना जाने ही आसा दिवार च लिखा है ना, मूर्ख सच ना जाने, सच नहीं जानता कि है कि जिस तरह रात का समा होवे, एक रस्सी पई होवे, एक इंसान डरी जाए कि सप पिया है मेरे च, उसमें सप नजर आ गए, वो भरम है, वो रियलिटी नहीं है, वो असलियत नहीं है। जितनी देर तक वो असलियत नु नहीं जान दिंदा कि है कि, उतनी देर तक कहते हैं मूर्खता ही का जीवन है। मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आ, उस तक आना जरा कोई सफला नहीं हो। तो कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन भरमा, तब लग मुक्त ना कोई। जितनी देर तक भरम नहीं टूट जाता, उतनी देर तक कोई मुक्त नहीं हो सकता, और जितनी देर तक आपा नहीं चीनते, उतनी देर तक भरम नहीं टूट सकता। तो यह साड़ी कल की विचार सी। गुरु महाराज जी आखते हैं चाहे कोई उदासी है, चाहे कोई दृष्टि है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया च रहिंदा है, चाहे कोई अमेरिका च रहिंदा है, चाहे कोई इंडिया च रहिंदा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बहुत सक्सेसफुल है, चाहे अनसक्सेसफुल है, मेरी नजर के लिए कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, मैं तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं लग रहा। क्योंकि अगर मनमुखी जन्म गवाया ही होना है तो महाराज कहते हैं दुनिया काहे आया, तो फिर सक्सेस का भी हो। अगर असी अखीर च अपना जीवन जो है हार के ही जा रहे हैं, तो फिर सक्सेस किस चीज की हुई? सक्सेसफुल तो वो है जो इस मनुखा जन्म दे विच आके जो रियलाइज करना सी उसनु रियलाइज करके जा रहा है, वो सक्सेसफुल। क्योंकि बाबा जी ने आख्या है सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा, सारा जगत हार के जाता है। क्योंकि कई बंदियां जिंदगी ऐसा हो जाता है कि मेरी जिंदगी पता नहीं मैं अनसक्सेसफुल रह गया, और देखो कितने सक्सेसफुल हैं, कितने कामयाब हैं, कितने खुश हैं, कितने अपने नालों बधेरे ज्यादा हो सक्सेसफुल लगते हैं। सिर्फ रिलेटिव टर्म है, लेकिन गुरु बाबा जी ये आखते हैं सब जग हारे, सारा जगत ही हार के जा रहा है, कोई भी तो सक्सेसफुल नहीं जा रहा। वो करोड़ा चो एक अद है जो गुरु के शब्द की विचार नाल अपने आपे नू पहचानदा। सो विचार हुण चली है अज अपने आपे नू पहचानन दी। ओयो ही दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, ओयो ही उदासी पूर्ण उदासी है। इट मेक्स नो डिफरेंस कि तुसी उदासी हो या ग्रिस्ती हो। सवाल इस चीज का है कि तुसी अपने आपे नू पहचानिया जा नहीं पहचानिया, उसनू पहचानन दे वास्ते एफर्ट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसनू पहचानन दी विधि ढंग टेक्नीक्स तुहानू आंदी है या नहीं आंदी। सो अज दे कीर्तन तो जितने कीर्तनगा होंगे वो इस चीज से होंगे कि आपा किमें पहचानिया जाता है, किमें पहचानिया जाता है, आपा पहचानने लिए किस किस चीज की जरूरत है। उन्हां एलीमेंट्स दे विचों एक भी अगर मिसिंग होएगा आपा पहचानिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो टेक्निक्स है वो उन्हां दियां बनाईयां होईयां हन जो जानते हैं।